ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसरुधय धीमहे तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्।